नमस्कार तिसहि को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन कहो सब गुण सुख दियो सतरन कहो पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान जा बुद करख करा करतारा पर जा तरत तब दे हो अपारा जब आ करख करत हो कबहू

कह हर नामे ही सुखमंडा हे राग गौरी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनहो मेरे मीता संत टहल की बेला यहाँ खाट चलो अल्लाह आगे बसन सहेला आउद कटे जिन सूर नारे मन गुर मिलका सुवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस हे जगाए पियाए रासिया कथ कथा तिन जानी जा को आए सोई बेहाजो हर गुरते मन हे बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बाहोर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुर

0: स्वामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मोको कर संतन की पूरे वाहिगुरु जी का
1: खालसा वाहिगुरु जी की
0: वाहिगुरु जी की फतेह।
1: तुद्या गै अरदास हमारी जियो पिंड साहब

गौरपुराकीर्तिपुरी प्रावरवरह्या भरपुरी खेम कुशल भयाय सुनन्ना पार ब्रह्म बिट्टो कुर्बन्ना।

को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दर गहमान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुरे एक ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार तौ धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या जिन सूत जे को बुझे होवै सचियार तवले उपर केता भार धरती होर पराय होर तिस्ते भार तलै कवन जोर जी जा तिरंगा के नाव। सबना लिखिया बुढ़ी कलाम मेहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सुवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत किता पसाओ एको कवाओ तस्ते हुए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वार या न जावा एक वार जो तुत पावै साई परिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुखवेद पाठ असंख जोग मन रहे हे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भक्सार असंख मोहन लिव लाए तार।

असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख मर कर जाहि जोर असंगल बढ़ हत्या कमाहि असंख पापी पाप कर जाहि असंख कूड़िया और कूड़े फिराहि असंख मलेश मल पख खाहि।

ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तथा नाद विनोद कोड़े आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तथा काट कढ़िए बहुत अनूप ताकियां गल्ला कथियां ना जाहे जे को कहे पिछे पछताए

तथा भगत वसह के लो अकर है अनंत सच्चा मन सोई सच खंड वसह निरंकार कर वे कर।

पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत देव सुरात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर।

नमो सासांग नमो पुप पुपे नमो दान दान नमो मन मन नमो रोग रोग नमो संग स्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद करता दूर दर्द अगंग ओ हरता परम परम परमेश्वर रोष पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग अचेदी अभेदीय नाम अकाम समस्त उपराजी समस्त अस्त धाम तेरा जो चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं आजू हैं आदेश हैं अपे हैं पुजंग प्रयात छंद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमस्त्वं नृनाथे नमस्त्वं परमार्थे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो रायराजे नमो सहसाजे नमो सहसाहि नमो महामाहि नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोके

नचत्रय नमित्रय परे हैं पवित्रय परथी सया दिशय दृशया कृष भगवती शांत्वय प्रसाद काते कि आशिज देशे क्या भिज भेस है क्या गंज कर्म है क्या भंज परम है क्या भिज लोक है क्या आदित सुख है क्या अवधूत वर्ण के बेभूत करने के राज प्रभ है धर्म तुझा है क्या अशोक वर्ण के सर्वा परण है के जगतं कृति है क्षत्रं क्षत्रिय ब्रह्म स्वरूपे ज्ञान बहुन उपे के आदा देव है क्या अपेव है चित्रम महीने के क्या दीने के रोजी रजा के रही मेरे हक के पाक भी ऐव है कि गैबुल गैब है क्या अबुल गुनाह है के सहान शाह है कि कारण पुनिंद है के रोजी देहन है कि राज करही मैं किरा कर्म करी मैं कि सर्वंकली है कि सर्वंगली है कि सर्वत्र मानी है कि सर्वत्र दानी है कि सर्वत्र दुगौन है कि सर्वत्र पौन है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जा हो कि सर्वत्र पा हो कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र मानिय सदैव प्रधानिय कहे सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पहन है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिमे के परम हिमे के आकर अलामे के साहिब कलम है के उसनुल वजू है तमाम रुजू है हमेशा लो सलाम है इसलिए खत्म होदा मैं गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है।

निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रवाह है, सुजुगत सुधा है, सदैव स्वरूप है, अभेदी अनूप है, समस्त उपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्त सुनाम है।

सर्वंगंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राण सर्वंत्राण सर्वंकर्म सर्वंधर्म सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्ता रसावल शांत प्रसाद नमो नरकनाशे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथम परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वभंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तत न मत न जात न पात नृसाक सुरीक अमितो अमीक सुदैव प्रवाह अजय अजा है भगवती छंद त्वे प्रसाद कि जा हर जूर है कि हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनुल चिराग है कि कामल करीम है किराज करीम है कि रोजी देहंद है कि राज करहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनुल जमाल है गरीमुल खिराज है गरीबुल निवास है हरीफुल सिकन है हराज सुल्फिकन है

मुन मन प्रणाम गुनगन मुदाम हर वर गंज हर नर पर भान्यन गन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर मंड अन पावनाश मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम छिज अंगासन अपंग उपमा पार गत मितोदार

करुणालय है और काले है, खल खंडन है, मैं मंडन है, जगदेश्वर है, परमेश्वर है, कलकार है, सर्व उबार है, त्रत के तन है, जग के कर्ण है, मनमानी है, जग जानी है, सर्वं पर है, सर्वंकर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वंपर है, सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है, ब्रह्मंड से खल खंड से परते पर है, करुणा कर है, अजप जप है, अथप थप है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अमृतामृत है, करुणाकृत है, अकृताकृत है, धरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अजवाकृत है, अमृतामृत है, नरनायक है, खलकायक है, विश्वंबर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्पायक है, पापंजन है, आर गंजन है, रिपतापन है, निपजापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्मस है, जस के जस है, भुजंग प्रयास।

अजय अलय पहुअुअनाशकाशगंज पंज लख पख अकाल दयाव अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथ परमाथे अजोनी अमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्म अपरम अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणाम्य समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनाम्य समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सत्वर्मंग बेपूते

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवि बात बेनती चौपाई।

हमरे दोष सबै कावहुआ भाद मोय बचावहु सुखी वसै मोरो परिवारा सेव सिख्य सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सबै रुकौआ संगरिए पूर्ण हुए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर न त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख्य हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ में मुझे उमरिए मन काल का त्रास निवरिए हूं जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रचा राख ले हूं राखन हारे साहिब सन सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता।

एकै रूप अनूप सुरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा होए बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी सृष्ट दिखाए चंपवे आजुगा स्वरूप स्वयंभू।

जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुष्ट हुए मरे पुरख जमन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सवटारे।

0: कृपा दृष्टि तुम जाहिने हरे हो थाके ताप तन कमहे हरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्याश्व सके न कोई।
1: एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम ते हारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत में शरण ते हारी आप हाथ दैले उबारी सर्व ठाउर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते देव बचाई। कृपा करी।

सुनै गुंगुरियो याहे सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द भाव निक न तिन नर के रह, हो जो या की एक बार चौपाई को कह, चौपाई संबत 17 सहस पणिजय 8 सहस फुन 3 कहिजय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सुतुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया।

सब लथे पाप को मते गुण गोविंद नित गाइए साध संग मिल त्याइए मन बांशत फल पाए गुर पूरा हृदय त्याए गुरु गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया गुरु गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा

अलमलखाई सरशाही पाई मूर्खंदे पत गवाई विणना मैं किस थाए ना पाई रहे बिमारी मड़ी मसाणी अंध ना जाने फिर पछताणी सतगुरु।

प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दोता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार यो करे तेरा कारज सब सवारणा

माहें सत्संगत सतगुर पाइए अहनस सब सलाह रहाओ। सच वखर धन रास लै पाइए गुर प्रगास ज्यो अग्न मरै जल पाइए त्यो तृष्णा दस दास। जम जंधार ना लग गई यो भव जल तरै तरास। गुरमुख कूड़ ना पावई सच रतै सच पाए सकत सच ना पावई कूड़ै कूड़ी पाए। सच रतै गुर मिलियै सचै सच समाए। मन में माणक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर धन नाम है घट घट गहर गंभीर। नानक गुरमुख पाइय दया करै हर हीर। श्री राग महला पहला। परमै पाहे न विजवै जे पवे दसंतर देस अंतर मैल न उतरै त्रिग जीवन त्रिगवेश। होर कितै भगत ना होवै बिन सतगुर के उपदेश। मन रे गुरमुख अग्न निवार गुर का कहया मन वसै होमै तृष्णा मार रहाओ। मान माणक निर्मोल है राम नाम पत पाए मिल सत संगत हर पाइए गुरमुख हर लिवलाए। आप गया सुख पाया मिल सलै सलल समाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो सो औगण आवै जाए जिस सतगुर पुरख ना भेट्यो सो भौजल पचै पचाए। इहो माणक जियो निर्मोल है इहो कौडी बदलै जाए। जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान गुर मिल भौजल लंघियै दरगै पत प्रवान। नानक ते मुख उजलै तुन उपजै शब्द निशान। श्री राग महला पहला। वणज करो वणजारेओ वखर लिहो समाल। तैसी वास्तव साही है जैसी निभ है नाल। अगै साहु सुजान है लैसी वस्त समाल। पाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर लै चलो सोह देखै पति आए रहाओ। जिन्ना रासना सच है क्यों तिन्ना सुख होए। खोटै वणज वणजियै मन तन खोटा होए। फाही फाथै मिर्ग ज्यो दुख घणो नित रोए। खोटै पोतै ना पवै तिन हार गुर दर्शन होए। खोटै जात ना पत है खोट ना सी जिस कोए। खोटै खोट कमावना आए गया पत खोए। नानक मन समझाइए गुर कै शब्द सलाह। राम नाम रंग रतियां पार ना भरम तिना। हर जपलाहा अगला निरभौ हर मन माह। श्री राग महला पहला। घर दूजा। धन जोबन अर फुलड़ा नाठियड़ै दिन चार। पबन केरै पत ज्यों ढल ढुल जुम्मन हार। रंग माण लै प्यारिया जा जोबन नौहुला। दिन थोड़ै थकै पया पुराना चोला रहाओ। सज्जन

उस पद निर्वाणी। काहे गर्भ समूढ़ आया पित सुतो सगल काल तर माता तेरे होए न अंत सखाया रहाओ। बिखै बेकार दुष्ट किरखा करे इन तज आत्मै होए त्याई जप ताप संजम होए चबराकै कमल बिकसै मद आश्रमाई। बीस सप्ताह रो बासरो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सारे दस अठार में अपरम्परो चीनै कह नानक इव एक तारै। श्री राग महला पहला घर तीजा अमल कर धरती बीज शब्दो कर सच की आब नित देह पाणी। होए किरसान ईमान जमाय लै पिस्त दोजक मूड़ै एव जानी। मत जान गह मत जान सह गली पाया मालकै माणै रूप की सोभा इत विधि जन्म गवाया रहाओ। मत जान सह गली पाया मालकै माणै रूप की सोभा इत विधि जन्म गवाया रहाओ। ऐब तन चिकड़ो ए मन मीड को कमल की सार नहीं मूल पाई पौर उस्ताद नित पाख्या बोलै क्यों बूझै जन है बुझाई। आखण सुनना पौन की बाणी एह मन रत्ता माया खसम की नदर दिले पिसंद जिनी कर एक त्याया तीह कर रखै।

दास एहो आधार रहाउ। मुख निंदा आखा दिन रात पर घर जोही नीच सनात। काम क्रोध तन वसै चंडाल तनक रूप रहा करतार। फाही सुरत मलूकी वेस होठ गवाड़ा ठगी देस। खरा स्याणा बहुता पार तनक रूप रहा करतार। मैं कीता ना जाता हराम खोर हो क्या मोदे सा दुष्ट चोर। नानक नीच कह बिचार तनक रूप रहा करतार। श्री राग महला पहला कर चौथा एका सुरत जित है जी। सुरत विहूणा कोई ना की जेही सुरत तेहा तिन राहो। लेखा इको आवो जाहो काहे जी करे चुतराई। ले वै दे वै टल न पाई रहाओ तेरे जी जिया का तो है। कितको साहिब आवै रो है जे तू साहिब आवै रो है। तू उन्ना का तेरे ओ है असी बोल बगाड़ बगाड़ै बोल। तू नदरी अंतर तोलै तोल। जै करनी तै पूरी मत करनी बाजो कट्टै कट। प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए आप पछाणै बूझै सोए। गुर प्रसाद करे विचार सो ज्ञानी दरगै प्रवान। श्री राग महला पहला कर चौथा तू दरिया उदाना बिना। मैं मछली कैसे अंतलहा जै जै देखा तै तै तू है। तुझ तै निकसी फूट मरा ना जाना मेहो ना जाना जाली। जा दुख लागै ता तुझे संभाली रहाऊं।

पारस परसीय पारस होए ज्योति ज्योत समाए जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। मन भुखा भुखा मत करै मत तू करे पुकार लख चौरासी जिन सिरी सब सह दे आधार। निरपौ सदा दयाल है सबना करदा सार नानक गुरमुख बुझियै पाइय मोख द्वार। श्री राग महला तीजा जिनी सुन कै मन्या तिन्ना निज घरवास गुरमती सलाह सच हर पाया गुणतास। शब्द रते सी निर्मलै हों सद बलहारै जास हृदय जिनकै हर बसै तित घट है प्रगास। मन मेरे हर हर निर्मल त्याए तुरमस्तक जिनको लिखिया से गुरमुख रहे लिवलाए रहाओ। हर संतो देखो नदर कर निकट वसै भरपूर गुरमत जिनी पछाणिया से देखै सदा हदूर। जिन गुण तिन साध मन वसै ओ गुणवंत्या दूर मनमुख गुण ते बाहरै बिन नावै मरद चूर। जिन शब्द गुरु सुन मन्या तिन मन त्याया हर सोए अंदन भगती रत्या मन तन निर्मल होए। कूड़ा रंग कुसंभ का बिनस जाए दुख रोए जिस अंदर नाम प्रगास है ओ सदा सदा थिर होए। इहो जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम ना चेतै लिव लाए पग खिसिए रहना नहीं आगे ठौर न पाए। ओ वेला हथ ना आवई अंत गया पछताए जिस नदर करै सो उपरै हर सेती लिव लाए। देखा देखी सब करै मनमुख बूझ न पाए जिन गुरमुख हिरदा सुध है सेव पई तिन थाए। हर गुण गावै हर नित पढ़ै हर गुण गाए समाए नानक तिन की बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिवलाए। श्री राग महला तीजा जिन्नी एक मन नाम त्याया गुरमति विचार तिनकै मुख सद उजलै तित सच्चे दरबार।

मनमुख नाम न जाननी बिना वे पत जाए शब्द साधना आयो लागे दूजे पाए विष्टा के कीड़े पवे विच विष्टा से विष्टा माहे समाए तिनका जन्म सफल है जो चले सतगुर पाए कुल उधारे अपना तन जनेंदी माए।

सतगुर मिलिए धन पाया। हर नामा हृदय समाल, नाम रतै सी निर्मल, गुर कै सहज सुपाई, मन तन रता रंग स्यों, रसना रसन रसाई। नानक रंग ना उतरै जो हर तुर छोड़िया लाई। श्री राग महला तीजा, गुरमुख कृपा करै भगत की जय, बिन गुर भगत ना होई, आपे आप मिलाए बूझै ता निर्मल होवै सोई। हर जियो साचा साची बाणी, शब्द मिलावा होई, पाई रे भगतहीन काहे जग आया पूरे।

क्या को आख सुनाए, गुरमुख आपै दे बढ़ाई आपै सेव कराए। देख कुटंब मोहे लोभाणा चलद्या नाल न जाई, सतगुर सेव गुण निधान पाया तिसदी कीम ना पाई। हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंतै होए सखाई, अपने मन चित कहे कहाए बिन गुरे आप न जाई। हर जियो दाता भगत बशल है कर कृपा मन वसाई।

सहज स्वभाए, सच्चा सच समाया, मिल रहे न विचड़ जाए। जो किश करना सो कर रहया, अवरना करना जाए। चिरीब शून मिलियन सतगुर पन्ने पाए, आपे कार कराए सी अवरना करना जाए। मन तन रत्ता रंग स्यो होमै तज विकार, अहनस हृदय रब रहै निरभौ नाम निरंकार। नानक आप मिलायन पूरै शब्द अपार, श्री राग महला तीजा गोविंद गुणी निदान है अंत न पाया जाए। कथनी बदनी ना पाइय होमै विचो जाए, सतगुर मिलिय सद भै रचै आप बसै मन आए। भाई रे गुरमुख बूझै कोय, बिन बूझै करम कमावणै जन्म पदार्थ खोए। रहाओ जिनी चाख्या तिनी साध पाया, बिन चाखै भरम भुलाए। अमृत साचा नाम है कहना किशु न जाए, पीब तू प्रवान पया पूरे सब समाए।

तीजा किस हो सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जाए सतगुर का भाणा मन लई विचो आप गवाए एहा सेवा चाकरी नाम वसे मन आए नामे ही ते सुख पाई है सच्चे शब्द सुहाए मन मेरे आनंदन जाग हर चेत अपनी खेती रख लै कूंज पड़ेगी खेत रहाओ मन की आयशा पूरिया शब्द रहया भरपूर पै पाए भगत करै दिन राती हर जियो वेखै सदा हदूर

समाए रहाउ सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सहज सुभाए गुरसबदी मन मोहया कहना कछु ना जाए जेहवा रती शब्द सच्चा अमृत पीवै रस गुण गाए गुरमुख एहो रंग पाईऐ जिसनु कृपा करे रजाए संसा एहो संसार है सुत्या रहण विहाए एक अपने भाणे कढ लयन आपे लयन मलाए आपे ही आप मन वसिया माया मोह चुकाए आप वडाई दित्तियन गुरमुख दे बुझाए

तुलसी पूरे पूरा तोल कथन कहण न छुटिया ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच न पाइया बिनार भगत प्यार नानक नाम ना बिसरै मेले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले पाई रतन विचार मन दी जाया गुरे अपने पाई सर्ब प्यार मुक्त पदार्थ पाई अवगुण मेटन हार पाई रे गुरबिन ज्ञाना हो पुछो ब्रह्मे नारद बेद ब्यास कोई रहाओ ज्ञान ध्यान धुन जानिया कत कहा वै सोए सफल बिरक हरी आवला चाप कनेरी होए ले लाल जवे हरमान की गुर भंडारै सोए गुर भंडारै पाईऐ निर्मल नाम प्यार सचो बखर संचिया पूरा कर्म अपार थो सुखदाता दुख मेटणु सतगुर असुर संघार पवजल बिखमंड रावणु ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस बंज मलार सतगुर भय कबोहता नदरी पार उतारिक तिल प्यारा विसरै दुख लागै सुख जाए जेबा जलो जलावणी नाम न जपै रसाए घट बिनसै दुख अगलो जम पकड़ै पछताए मेरी मेरी कर गए तन धन कलत न साथ बिन नावै धन बाद है भूलो मार गया सचो साहिब सेविया गुरमुख अखतो कात आवै जाए पुआइया पया किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मिट्टिया लिखिया लेकर जाए बिन हर नाम न छुट्टी है

आप हुआ सदा मुक्त सबकुल निस्तारिया सोहन सच द्वार नाम प्यारिया मनमुख मरे अहंकार मन बिगाड़िया सबो वरते हुक्म क्या करे विचारिया आपों दूजे लग खसम विसारिया नानक बिन नामी सब दुख सुख विसारिया महला तीजा गुर पूरे हर नाम दड़ाया तन विचों भरम चकाया राम नाम हर कीरत गाई कर चानण मग दिखाया होमे मारे कलव लागी अंतर नाम वसाया गुरमति जम जोहै न साके साचे नाम समाया सब आपी आ वरते करता जो पावे सो नाए लाया जन नानक नाम लय ता जीवें बिन नामे खिन मर जाया पौड़ी जो मिलया हर दी बाण स्यों सो सबनी दी बाणी मिलया जिथे ओ जाए तिथे ओ सुरखरु उसके मोह डिठे सब पापी तरिया उस अंतर नाम निदान है नामो परवरिया नाउ पूजिए नाउ मनिए नाय किलवक सब हिरिया जिन्नी नाम त्याया एक मन एक चैत से अस्तर जाग रहा श्लोक महला तीजा आत्मा देव पूजिए गुर के सहज सुभाए आत्मे नू आत्मे दी प्रतीत होए ता कर ही परचा पाए आत्मा डोलना डोलई गुर के पाई सुवाए गुरबिन सहज न आवे लोभ महल न विचों जाए खैन पाल हर नाम मन वसे सब अठ सर तीर्थ नाए सच्चे मैल न लगी मल लागे दूजे पाए तोती मूल ना उतरे जे अठ सर तीर्थ नाए मनम कर्म करे अहंकारी सब दुखो दुख कमाए नानक मैला ऊजल तां थिए ज सतगुर माहे समाए महला तीजा मनमुख लोक समझाए कद हो समझाया जाए मनमुख रलाया ना रले पये पया किरत फिराए लैव तात दो राह है हुक्मी कार कमाए गुरमुख अपना मन मारिया शब्द कसवटी लाए मन ही नाल झगड़ा मन ही नाल सथ मन ही मंज समाए मन जो इच्छे सो लहे सच्चे शब्द सुभाए अमृत नाम सद पुंचगे गुरमुख कार कमाए विण मन्ने जे होरी नाल लुजना जासी जन्म गवाए मन मुखी मन हठारिया कूड़ सत कमाए गुर प्रसादी मन जिने हर से तीले बलाए नानक गुरमुख सच कमावे मन मुख आवे जाए पौड़ी हर के संत सुनहु जन पाई हर सतगुर की एक साखी जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक दिन जन लै हिरदे राखी हर अमृत कथा श्रेष्ठी उत्तम गुर बचनी सहजे चाखी तह भया प्रगास मिटिया अंधियारा ज सूरज रैण किराखी अदिष्ट गोचर लख निरंजन सो देख्या गुरमुखियाखी श्लोक महला तीजा सतगुर से श्लोक महला तीजा सतगुर सेवे अपना सो सिर लेखे लाए विचों आप गवाए के रहन सच लिवलाए सतगुर जिनी ना सेव्यो तिन बिरथा जन्म गवाए नानक जो तिस पावे सो करे कहना किशु ना जाए महला तीजा मान वेकारी वेड़िया वेकारा करम कमाए दूजे पाए अग्ञानी पूज दे दरगह मिले सजाए आत्म देव पूज गए बिन सतगुर पूज न पाए जम तप संजम पाणा सतगुरु का करमी पल्ले पाए नानक सेवा सुरत कमावनी जो हर पावे सो थाए पाए पौड़ी हर हर नाम जप हो मन मेरे जित सदा सुख होवे दिन राती हर हर नाम जपो मन मेरे जित सिमर सब किलवख पाप लहाती हर हर नाम जपो मन मेरे जित दाल दुख भुख सब लै जाती हर हर नाम जपो मन मेरे मुख गुरमुख प्रीत लगाती जित मुख भाग लिखिया तुर साचे हर तित मुख नाम जपाती श्लोक महला तीजा सतगुर जिनी ना सेव्यो शब्द ना कीतो विचार अंतर ज्ञान ना आयो मृतक है संसार लख चौरासी ही फिर प्या मर जमे होए खुआर सतगुर की सेवा सो करे जिसनू आप कराए सोए सतगुर विच नाम निदान है कर्म प्राप्त होए सच रते गुर शब्द स्यों तन सची सदा लिव होए नानक जिसनू मेले ना विछड़े सहज समावे सोए महला तीजा सो भगौती जो भगवंत है जाने गुर प्रसादी आप पछाणे तापत राखे इकत कर आने जीवत मरे हर नाम वखाणे ऐसा भगौती उत्तम होए नानक सच समावे सोए महला तीजा अंतर कपट भगौती कहाए पाखंड पार ब्रह्म कदे न पाए पर निंदा करे अंतर मल लाए बाहर मल धोवे मन की झूठ न जाए सात संगत स्यों बाद रचाए अणदन दुखिया दूजे पाए रचाए हर नाम न चेते बहु कर्म कमाए पूर्व लिखिया सो मेटना न जाए नानक बिन सतगुर सेवे मोख न पाए पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से करना सवाही सतगुर।

जन्म जीत मरण मन मानिया, आप हुआ मन मन ते जानिया, नजर पही कर करते जानिया। जसा तीर्थ मज्जन नाम।